जब खुदा किसी को बनाता है ना तो उसमें कुछ खास बात होती है, लेकिन खुदा ने अदा को बनाया इसीलिए वो खास बात खुदा में है।

0: एक्सट्रीम इनर्जी ड्रिंक टाइम चेक अहिले ठीक 4 बजेको छ
1: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी

0: एक्सट्रीम इनर्जी ड्रिंक
1: टाइम चेक अहिले ठीक 5 बजे को छ
2: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी
3: तपाईं रेडियो मर्सेन्जी एफएम

0: Sud.
1: Terus gitu ya.
0: Truk.
2: Darah sudah.
1: Tapi tuh, mudah kasar boys.
2: Pak. Tio tuh, pagar ya.
3: Baca kok di hantus?
2: Tio tuh, target ready pun, saya diri.
0: Adis.
2: Truth ki dia.
0: Truth.
2: Ani sathi, tero naam bahra kasari bhare khasma?
0: O to.
1: Bahra.
0: Me.
2: Bujhe bujhe. Nice one.
0: Lo, gumo hai da.
1: Jukti.
2: Lala. Oi.
1: Truth ki dia. Truth. अरे ना देर
2: देर
1: मर्डर जल्दी देर की तो बुझी
0: क्या दिन यहीं से जा देव
2: ओए लाल लाल सेम भाई
1: लाइन मर्डर आयें तो
2: कैसे बे
0: पुत्र गेट था नहीं तो गेट पर जुआ आओ से नहीं फर्स्ट में तेरा तो लैंग आने वाला है
1: किराये बने नहीं
0: मतलब बने नहीं जो से क्या लैंग आने में से हन्नी हन्नी नहीं
4: One kitty for us.

0: एक्सट्रीम इनर्जी ड्रिंक
1: टाइम चेक अहिले ठीक 6 बजेको छ
2: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेक द डिफरेंस फील द एनर्जी
3: मर्सिडीज़ FM 95 मेगाहर्ट्ज़

0: एक्सट्रीम इनर्जी ड्रिंक
1: टाइम चेक अहिले ठीक 7 बजेको छ
2: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी